समूह स्वर में अभी आपने गदी माडगुळकर की रचना सुनी। कार्यक्रम की अगली देशभक्ति पर रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। आइए समूह स्वर

दत्ता पाटिल की ये रचना अभी आपने सुनी प्रहलाद शिंदे के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये भक्ति रचना मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।

मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं अनुराधा मराठे के स्वर में रमन रणदिवे की ये भक्ति रचना।

रमन रणदिवे की भक्ति रचना अभी आपने सुनी अनुराधा मराठे के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

Mari sadani ri sadani pari

सरस्वतीं भगवतीं हंस विनोदिनिरगा मिश्रजाति झंपिताळा। नौ सरस्वतीं भगवतीं सेट्टु हंस विनोदिनिरगा मिश्रजाति झंपिताळा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो ये प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार पंडित संदीपन समाजपति.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी फोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग भाटियार. Our artist this morning, Pandit Sandipan Samajpati, accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now,

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी में सितार वादन, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भटियार बाय आवर आर्टिस्ट पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन डीटीएच एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी। आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट अंजन साहा, accompanying on the tabla Tarun Roy. Now listen to a sitar recital in Rag Jaunpuri by our artist Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी by our artist Anjan Saha, accompanying on the tabla, Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kankani. Rag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwada Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। एंड नाउ वी प्रेजेंट राग पूर्वी कल्याण बाय पंडित दिनकर कैकिनी। विलंबित एंड द्रुत कॉम्पोजिशंस आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिणी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरुरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर कैकिणी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दीपक नेरुरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय बबन मांजरेकर। This was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है रसिया हूँ और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है तरपत रैन दिन.
2: This is Ragam Channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. He first presents rag Maru Bihag, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ektal, followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे और लीजिए सुनिए ठुमरी बोल हैं जादू भरे नैना।
1: यू जस्ट हर्ड राग मारू बिहाग कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल पंडित भीमसेन जोशी नाउ प्रेजेंट्स अ ठुमरी

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए अभंग, बोल हैं देव विट्ठल।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। पंडित भीमसेन जोशी नेक्स्ट प्रेजेंट्स अभंग।

0: अभी आप सुन रहे थे अभंग। कार्यक्रम के आखिर में पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ये भजन प्रस्तुत है, बोल हैं जो भजे हरि को सदा।
1: यू जस्ट हर्ड अभंग बाय पंडित भीमसेन जोशी। ही नाउ कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद अ भजन।

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गायन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: With that bhajan, we come to the end of the vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, राग है यमन कल्याण। इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और झाला, जिसके बाद आप सुनेंगे गत जो धमार ताल में निबद्ध है।
2: इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। बिगिंस हिज रिसाइटल विथ राग यमन कल्याण, आलाप, जोड़ एंड झाला, फॉलोड बाय गत सेट टू धमार ताल।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, राग था यमन कल्याण। आपके साथ पकावत पर संगत की प्रकाश शेजवाल ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार पर बजाया राग अलैया बिलावल। इसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़, जिसके बाद आप सुनेंगे गत, जो कि चौताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
2: दैट वाज राग यमन कल्याण। पंडित कार्तिक कुमार वाज अकंपनीड ऑन पखावज बाय प्रकाश शेजवाल। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम वी प्रेजेंट राग अलहैया बिलावल ऑन सुरबहार बाय पंडित कार्तिक कुमार, इन विच यू लिसन आलाप जोड़ फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग अलहिया बिलावल, और अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरभार पर बजाया राग चंद्रकोंस।

0: इसमें आप पहले सुनेंगे आलाप और उसके बाद एक गद जो कि चौताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
2: दैट वाज राग अल्हैया बिलावल, पंडित कार्तिक कुमार नाउ प्रेजेंट राग चंद्रकांत, इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय गद सेट टू चौताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। पखावज पर आपके साथ संगत की प्रकाश शेजवाल ने। यह आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
2: यू आर लिसनिंग सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार, अकंपनीड हिम ऑन पखावज बाय प्रकाश शेजवाल। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी तदुपरांत काफी दादरा सुनवाएंगे. कलाकार हैं अंजना नाथ. आपके साथ तबले पर हैं असित कुमार जाना और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी तदुपरांत काफी दादरा. कलाकार हैं अंजना नाथ.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू खम्बाज ठुमरी फॉलोड बाय काफी दादरा. आवर आर्टिस्ट इज अंजना नाथ. Accompanying our artist on the tabla is Asit Kumar Jana and on the harmonium is Debashish Adhikari. Listen now to Khambaj Thumri and Kafi Dadra, our artist Anjana Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम खम्बास ठुमरी सुन रहे थे, तदुपरांत काफी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे अंजना नाथ। आपके साथ तबले पर थे औसित कुमार जाना और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं सुधेंदु हालदार। आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता।
1: You were listening to Khambaj Thumri and Khafi Dadra. Our artist was Anjana Nath. Accompanying our artist on the tabla was Oshit Kumar Jana and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Sarangi recital. Listen to a Sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist is Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla is Joy Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाग्यश्री पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुधेंदु हालदार, आपके साथ तबले पर थे जॉयदास गुप्ता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist was Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla was Joy Das Gupta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मीरिंतवरकु श्री जी बालकृष्ण प्रसाद गात्र कचेरी विन्नारु वाद्य सहकारं वायलिन पै श्री पुदुकोटै आर रामनाथन मृदंगं पै श्री जी रामचंद्रन कार्यक्रमं आकाशवाणी कडप केंद्र समर्पण मीरु विंटुन्नारु भारतीय शास्त्रीय संगीतानी डीटीएच पै निरंतरं मीकु अंदिंचे चानल रागम.
1: You were listening to a Carnatic classical vocal recital by Shri G. Balakrishna Prasad. He was accompanied on violin by Shri Pudukottai R. Ramanathan and on mridangam by Shri G. Ramachandran. This program was contributed by
0: Akashavani
1: Kadapa for Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संतूर वादन. कलाकार है श्री सिद्धनाथ मिश्रा. सबसे पहले आप बजाएंगे राग बसंत मुखारी. विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सनी न्याजी. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टूडे वी आर प्रेजेंटिंग संतूर रिसाइडल बाई श्री सिद्धनाथ मिश्रा. फर्स्टली He is presenting Raag Basant Mukhari. Both the compositions are set to Teen Taal. Accompanying him on tabla, Sunny Niazi.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग बसंत मुखारी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग चारुकेशी। तबले पर संगति दी है सनी नियाजी ने। विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल पर निबद्ध है। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग बसंत मुखारी बाई सिद्धनाथ मिश्र। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी एकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला सनी नियाजी। Both the compositions set to Teen Tal.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग चारुकेशी। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ यू आर लिसनिंग राग चारुकेशी बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा। अब आपके सामने प्रस्तुत है पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट पखावज वादन by Pandit Raj Khushiram. He is presenting Mohan Tal and accompanying him on Sarangi, Vinod Kumar Mishra.

सूत्र है, इसमें छह प्रकार की लयों का वर्णन किया गया है। टिट क त ग ई ग धा टिट धा टिट धा धा टिट किड धा टिट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट तगिन धा तगिट तक तक धगिट दग दिन धगिट दग दिन धगिन धा किट तक दिगन न किट तक तकिट थुकिट तक धाद्र दिगिट तक धा धान धिकिट तकिट थुकिट तकिट थुकिट दिगन लान धकिट दान त्रिगिट तक ता त्रिक तक दिगन धा तां धा त्रिगिट तक ता त्रिक तक दिगन धा तां धा त्रिगिट तक ता त्रिक तक दिगन धा तां धा त्रिगिट तक ता त्रिक तक दिगन धा तां धा त्रिगिट तक ता त्रिक तक दिगन धा तां धा त्रिगिट तक ता त्रिक तक दिगन धा तां धा त्रिकट तक धा त्रिकट तक धा कांधा त्रिकट तक धा त्रिकट तक धा कांधा।

प्रस्तुत है नव दुर्गा परन। इसमें नौ देवियों के नाम आए हैं और गुरु कृपा से ये स्वनिर्मित है। दुर्गे दुर्गति हारणी माता दिधान तान धाता शैल पुत्री जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलन त्रयताप हारणी गदिगण धा चंद्र घंटा गणन गणन घन घनात घनन घन कुष्मांडा गदिन धान धान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय कान त्रिगृतिकता तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमाधा महिमाधा लघिमाधा त्रिगृतक ईशत्वधा वैश्वत्वधा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमितत्वधा धाधा पुंगी फलतांबूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर करधर राज नमत जय नव दुर्गे शंखनाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धाधरी जय बा जय ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा धा धा धा धा धा धा।

अभी आप सुन रहे थे पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग मोहन ताल ऑन पखावज बाय पंडित राज खुशी राम। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं शांति हीरानंद. आप सुनेंगे ठुमरी तिलक कामोद, बोल हैं बैरन कुयलिया नाबोल. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1982 में की गई थी. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani light classical vocal recital by Shanti Hiranand. The rendition commences with Thumri Tilak Kamod. This was recorded in the year 1982.

अब आप सुनेंगे कजरी पीलू, बोल हैं बरसन लागी सावन बुंदियां। नाउ लिसन टू कजरी पीलू।

अगली प्रस्तुति है भैरवी ठुमरी, बोल हैं मैं तो तोरे दामन वाला गी। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज भैरवी ठुमरी।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं शांति हीरानंद। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय शांति हीरानंद। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे भैरवी दादरा, बोल हैं चली रे मोर नैया किनारे किनारे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी दादरा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी शांति हीरानंद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय शांति हीरानंद। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन। पहले पेश है राग मालकौंस में आलाप। विलपगत एक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. Alap is in Rag Malkons. The Vilambit Gat is set to Ek Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मारू बिहाग, आलाप और द्रुतगत एक तालबद्ध है।
1: You were listening to a Shehnai recital in Raag Malkons by Vikas Babu and Company. Now listen to a Raag Maru Bihag.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू वर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मारू बिहाग। नाउ लिसन टू अ धुन।

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं राधे सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।